नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़ गए थे। जी और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी अब हम उसे सुरीला सफ़र के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया। कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेसी होता है उसकी ज़िंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहाँ जहाँ वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहाँ वह लौट कर आना चाहता है। हर त्यौहार हर खुशी हर दुख में सबसे ज़्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आँखों में खुशी आएगी और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव अपने शहर अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया है?